0: पाण्याचा प्रत्येक थेंब मोलाचा, जणू अंश सोन्याचा। पाणी वाचवा, पाण्याचा पुनर्वापर करा। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।
1: नमस्कार, मैं हूँ मधिशन आचल और आप सुन रहे हैं रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

0: रेडियो नगर 90.4 एफएम आवाज तुमचा।
1: तुम्ही ऐकत आहात स्नेह वार्ता फक्त रेडियो नगर 90.4 एफएम वर।

सुधर्मा स्वामी जैसे भगवान महावीर के शक्ति को महसूस करते हैं। कैसे प्रतिपूर्ण वीर था उनका, शक्ति होना और परिपूर्ण होना है। होना अलग बात है और उसका यूज में आना अलग बात है। जैसे जैसे हम यूज में लेते जाते हैं वैसे वैसे शक्ति बढ़ती है, जैसे जैसे हम यूज में लेना कम करते हैं वैसे वैसे शक्ति घटती ही चली जाती है। गुरुदेव के प्रवचन में एक प्रसंग आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। एक किसान के आंगन में गाय ने बछड़े को जन्म, पहले दिन का बछड़ा था। किसान के पत्नी ने उसको उठा लिया, उठा करके ऊपर ले आई। किसान ने भी उठा करके ऊपर ले आया। उसके बाद किसान के पत्नी का वो रोज का रिचुअल बन गया। डेली बछड़े के पास जाना, बछड़े को उठाना और ऊपर उठा के लेके आना सेकंड फ्लोर पर। एक महीना हो गया वो रोज चलते थे, उठाते थे। अब एक महीने के बाद बछड़ा, लेकिन वो उठा लेते थे। एक दिन उसने अपने पति को कहा, देखते हैं किसमें ताकत ज्यादा है। बोले, क्या बात करती है, मैं सामने हट्टा कट्टा हूं। बोले, तेरे से। बोले, देखते हट्टा कट्टा होना अलग बात है, ताकत होना अलग बात है। बोले, एक कसौटी है, बछड़े को उठा करके ऊपर लाना है। बोले, ले आते। अब किसान गया, अब किसान के पास तो पहले तो बछड़ा आया नहीं। जैसे उसको पकड़ने के जाए पाँव मारे, उठन लगा था, बहुत जोर लग गया उसको, बड़ी मुश्किल से। अब उसकी ताकत दोनों में लग रही है, उसको पकड़ने में भी और उसको उठाने में भी। हब गया बेचारा और पत्नी मजा ले रही है उसके। बोले, मेरे पर हंसती तो उठा के बता। वो गई, बछड़ा आराम से उसके पास आ गया, उठा करके ऊपर लेकर के आई। गुरुदेव फरमाते थे कि जिसकी प्रैक्टिस होती है उसकी एनर्जी बढ़ती है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती है उसकी एनर्जी नहीं बढ़ती है। एनर्जी होती है लेकिन वो डेवलप नहीं होती। तीर्थंकर परमात्मा की एनर्जी कैसी डेवलप होती गई। संयम सहसान वो जो नाम तिकंडगे पंडग वे जयंते, 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत है। 1,00,000 योजन यानी 4,00,000 माइल पकड़ लीजिए आप। उसमें से 1,00,000 योजन जो है वो जमीन के अंदर है और 99,00,000 योजन ऊपर है। और उसके तीन विभाग करे, तीन विभाग है। 33,000 तक वो जो है बिल्कुल जमीन है, भूमि में है। वहाँ रेती है, मिट्टी है, वहाँ पेड़ उगते हैं, वहाँ फूल उगते हैं। तीसरा जो दूसरा जो 33,000 का है वो स्वर्णमय चमकता है, कांतिमान है। और तीसरा जो है सुमेरु पर्वत का वो रत्नमय है। जैसे जैसे आप किसी भी क्रिया में आगे बढ़ते हैं, किसी भी साधना में आगे बढ़ते हैं, ये तीन कंडक आते हैं। तीर्थंकर महावीर के तरफ यदि आप देखोगे तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी कि उनका भूमि में जीवन था, नैसार का, मरीची का, त्रिपुष्ट वासुदेव का, कि भूमि उसको कहते हैं जो बीज बोया वो पनपा है, जैसा बीज बोया वैसा पनपा है। गाली आई, गाली पनपी, भय आया, भय पनपा, दुश्मन आया, दुश्मन पनपा, दोस्त आया, दोस्त पनपा, भगवान आए, भगवान पनपे, गुरु आए, गुरु पनपे, जो आया वो पनप गया। एक श्रद्धा की धरती है वो, अपना करीबन करीबन ऐसा है, जो आया वो पनपता है, वो पनपते चले जाता है। और फिर जो ज्यादा आता है वो ज्यादा पनपता है, वो दूसरे को पनपने नहीं देता है। आम्र वन में बबुल का पेड़ पनपता नहीं है, आमराई में आपको कांटा नहीं चुभेगा। जो आमराई में आप देखोगे तो आपको कांटा नहीं चुभेगा। और जहां बबुल का जंगल है वहां आम का बीज बो भी दो आप तो पनपता नहीं है। ये बीज है, जमीन भी है लेकिन पनपता नहीं, क्योंकि आसपास में क्या है, सारी आमराई है। बबूल के बीच में आम का पेड़ नहीं पनपता और आमराई के बीच में बबूल नहीं पनपता। जैसे जैसे तीर्थंकर परमात्मा का जीवन वैसे अपने तरफ भी देखते जाइए। हमारे आसपास में आम के पेड़ है तो हमारे अंदर कोई बबूल का बीज बो भी दे तो पनपेगा नहीं। और हमारे आसपास में सारा बबूल का जंगल है, मैं भी बबूल, मेरे आसपास में भी बबूल, और कोई आकर के आम का पेड़ भी बीज बो दे तो पनपने वाला नहीं।
क्या ये संघ की महिमा है, क्या परिवार की महिमा है? बीज तो है लेकिन पनपता नहीं, और इसलिए रेगिस्तान में आपको आराम से कांटे के पेड़ मिलेंगे। तो तीर्थंकर महावीर का सुमेरु पर्वत कैसा है? 33,000 योजन तक भूमि में उनकी श्रद्धा, उनका ज्ञान, उनका चरित्र। सामने से शेर आया, खुकवार शेर आया, मुंह फाड़ कर फेंक दिया, जो आया वो पनपा। सामने से अश्वग्रीव प्रतिवासुदेव आया, उसको खत्म कर दिया। कपिल आया, कपिल में थोड़ी फूस दे दी, उसके चक्र में आ गए, परमात्मा से दूर हो गए। एक धरती का अपना जीवन है, जैसा बीज वैसा पनपते हैं। इस कंडक के आगे पहुंचना ये सबके जीवन में, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं, चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे कोई भी होगा, उसका पाष्ट तुम्हारा मेरा पाष्ट इक्वल है। उनके पाष्ट में ना अपने पाष्ट में कोई अंतर नहीं है। जैसा गुस्सा, जैसा दुख, दूसरे को परेशान करना जैसे आज हम करते हैं, वैसे उन्होंने भी पहले किया हुआ है। अंतर कहाँ गया? उसमें से ऊपर उठ गए, किसी ने उनको उठाया है, वो उठ गए। और भगवान महावीर की तरफ जब मैं देखता हूं तो उनको उठाने वाली माँ थी, उठाया, और ऐसा उठाया, ऐसा उठाया कि उसके बाद उनकी जमीन जो है सुवर्ण भूमि बन गई, सुवर्ण भूमि बन गई। अब उस सुवर्ण भूमि में केवल अंदर का ही तपता है, अंदर का ही निखरता है, वहां कोई भी बीज वो पनपता नहीं है। इसको कहते स्वयं बुद्ध हो जाना है। 15 तीन प्रकार है बेसिकली, कुछ समझाने से समझते हैं, समझाने से बिगड़ भी जाते हैं। बिगड़ने वाला मिल गया, बिगड़ गए, समझाने वाला मिल गया, समझ गए। हम सबका नंबर उसी में है। कोई संभालने वाला मिल गया, संभल गए, कोई बिगाड़ने वाला मिल गया, बिगड़ गए। और इस हालत में ध्यान रखना होता है, इस हालत में ध्यान में रखना होता है कि कोई बिगाड़ने वाला नहीं आ जाए, कोई बिगाड़ने वाला नहीं आ जाए। एक बिगाड़ने वाला आ जाए तो 1,000 संभालने वाले को फेल कर देता है, एक बिगाड़ने वाला। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि बिगाड़ने वाला अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। बच्चे के जीवन में बिगाड़ने वाला नहीं आएगा, इसकी गारंटी आप दे नहीं सकते हो। लेकिन बच्चे का जीवन ऐसा बना सकते हैं कि बिगाड़ने वाला उसके दरवाजे पर आएगा लेकिन अंदर नहीं आएगा। हो सकता है? नहीं हो सकता है, आने से नहीं रोक सकते। रावण को लक्ष्मण ने आने से नहीं रोका है, लेकिन बाउंड्री के अंदर एंट्री नहीं करेगा इसकी व्यवस्था करी। सर सोच सकते हैं आप कि आपने बच्चे के आसपास में ऐसी बाउंड्री तैयार करी है क्या कि रावण उसके जीवन में एंट्री नहीं करे? आएगा, बाउंड्री पर आएगा, 100% आएगा। मेरे बाउंड्री पर आता है, तुम्हारे बाउंड्री पर आता है, नहीं आता ऐसा कहना ही मत। मच्छरदानी लगाने से मच्छर बंद नहीं होते, केवल अंदर नहीं आते। तो मच्छर को समाप्त करने का तो प्रयास पागलपन का है, लेकिन मच्छर अंदर एंट्री नहीं करे इसकी व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं, और सहजता से कर सकते हैं। और वो व्यवस्था करने के लिए ये शासन है। अब देखो जैन साधु की पूरी व्यवस्था की तरफ, एक ऐसी बाउंड्री बना दिया, एक ऐसा प्रोटोकॉल बना दिया है कि आते हैं लेकिन अंदर एंट्री नहीं करते। एक आलोचना की बाउंड्री बना दी, एक प्रतिक्रमण की बाउंड्री बना दी, एक क्षमापना की बाउंड्री बना दी। नहीं आता ऐसा मत कहना, आता है, मेरे पास भी आता है, तुम्हारे पास भी आता है। लेकिन ये बाउंड्री होने के कारण से वो दस्तक देता है अंदर एंट्री। अब मैं उसको बाहर जाकर के मिलूं तो वहां तुम भी कोई नहीं कर सकते हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बाउंड्री का काम केवल इतना ही है कि बाहर से आने वाले को रोके, अंदर से बाहर जाने से रोका नहीं जा सकता है। लक्ष्मण क्या कर सकता है कि रावण अंदर ना आए लेकिन सीता बाहर नहीं जाए। यदि इतनी व्यवस्था कर लेता लक्ष्मण कि सीता बाहर नहीं जाए,
और तीर्थंकर परमात्मा ने व्यवस्था करी, एक को कहते संवर, एक को कहते गुप्ती। अब थाने दो ही शब्द कितना समझे मैंने मालूम को नहीं। एक को क्या कहते हैं? संवर कहते दरवाजा बंद कर दिया है। संवर क्या कहते हैं? दरवाजा बंद कर दिया। गुप्ती कहते हैं अंदर वाला बाहर जाता नहीं। मन गुप्ती का मीनिंग क्या है? मन आप बाहर नहीं जाएगा। वचन गुप्ती का मीनिंग क्या है? बाहर नहीं जाएगा। काया गुप्ती का मीनिंग क्या है? आप काया बाहर नहीं जाएगी। संवर का मीनिंग क्या है? अंदर कोई नहीं आएगा। आसुरों के आने के दरवाजे बंद कर दिए। आने के दरवाजे बंद कर करके काम नहीं चलता है, जाने के दरवाजे भी बंद करने पड़ते हैं। और जाने के दरवाजे बंद करना, इसको गुप्ती कहते हैं। ये तो जिन शासन है, जिन शासन में हर बात का समाधान है, वो टेक्निक कि गुप्ती कैसे करनी। तो स्वर्णमय भूमि आ गई। अब स्वर्ण भूमि पर कोई बीज बोया ही नहीं जा सकता है, और कोई बीज आकर के पड़ भी गया तो पनपता नहीं है। अब बीज पनपना बंद हो गया है। बाहर से बीज आया तो भी अंदर में ग्रहण होता नहीं, और ऐसे जब बाहर से बीज आना बंद हो गया तो अंदर का तप, अंदर का ज्ञान, अंदर की श्रद्धा, अंदर का चरित्र, अंदर की शक्ति निखरती चली गई, निखरती चली गई। और एक तीसरा कंडक आता है जो रत्नमय है, वो भी 33,000 योजन का है। वो कंडक आता है, वो एक विभाग आता है। और डायमंड में तो कुछ पनपने का सवाल नहीं, लेकिन एक अलग क्वालिटी आ जाती है। एक अलग क्वालिटी आ गई कि डायमंड दूसरे को प्रभावित करता है, केवल उसका अस्तित्व ही दूसरे को प्रभावित करता है, केवल उसका होना ही प्रभावित कर जाता है, उसका होना ही प्रभावित कर जाता है। तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर के जीवन के सुधर्मा स्वामी इन तीन कंडक को देख रहे हैं। पहला कंडक है जब तक विमल माता नहीं मिली, दुश्मन आया दुश्मनी बढ़ी, आचार्य संभूति विजय आ गए संयम बढ़ गया, भगवान ऋषभदेव मिले भक्ति बढ़ गई, कपिल मिल गया चिटिंग हो गई अहंकार बढ़ गया, सामने खुकवार शेर आया अंदर की क्रूरता जागृत हो गई। एक वो जीवन था तीर्थंकर महावीर का, उसको क्या कहते हैं? भूमिमय कंडक। कौन सा कंडक? भूमिमय कंडक। और उसके बाद विमला रानी की उसके जीवन में आई और वो भूमि समाप्त हो गई। अब उसके ज्ञान भूमि नहीं है, श्रद्धा भूमि नहीं है, चरित्र भूमि नहीं है। अब ज्ञान कैसा हो गया? सोने जैसा हो गया। श्रद्धा कैसी हो गई? सोने जैसी हो गई। चरित्र कैसे हो गया? सोने जैसा हो गया। भक्ति कैसी हो गई? सोने जैसी हो गई। अभी हमें अपने अंतगण सूत्र की आराधना करी है। राजग्रही नगरी में अर्जुन मालिक का आतंक छा गया और मैक्सिमम लोगों की श्रद्धा भूमिमय थी, तो अर्जुन मालिक की दहशत पनप गई। एक सुदर्शन की धरती जो है, श्रद्धा जो है, वो स्वर्णमय थी, तो वहां पर दहशत का बीज पनपा ही नहीं, उस पर कोई असर ही नहीं, कोई पनपता ही नहीं। और तीसरी धरती आती है, दूसरी धरती देखोगे तीर्थंकर महावीर की, तो बीज पनपने बंद हो गए, बीज पनपने बंद हो गए। संगम कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, कोई अंदर के एक एक हार्ट बीट्स में भी अंतर नहीं। इसको कहते सुवर्णमय धरती हो गई, लेकिन संगम प्रभावित नहीं हो रहा है, संगम प्रभावित नहीं हो रहा है। और फिर आता है तीर्थंकर नाम कर्म का पंडक वंश।

जय वो त्रिकंड के ऊपर जो है पांडुक वन है, पांडुक शिला है जहां सुमेरु पर्वत पर तीर्थंकर का जन्म कल्याण का अभिषेक होता है। वो कैसी एक पताका के समान है। ये तीन कंडक हो गए परमात्मा के, और उस ऊपर में क्या है फिर तीर्थंकर नाम कर्म की पताका लहराती है, मजा आ जाती है। अपने ये तीन कंडक हो जाने चाहिए। अभी अपन जिस कंडक पर है वहां की वैसी व्यवस्था करनी चाहिए। अभी अपना कंडक कौन सा है, भूमि का है। यहां जैसा बीज बोएंगे वैसा पनपेगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरा मेरी भूमि बबुल का फॉरेस्ट नहीं बने, तो बबुल के बीज न बोए जाए इसका ध्यान रखना ही होता है। यदि चाहते हैं कि मेरी धरती नंदनवन में हो जाए तो कल्प वृक्ष के बीज बोने ही होंगे। बिना कल्प वृक्ष के बीज बोए काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं मुझे ये भी नहीं बोना, वो भी नहीं बोना, नहीं चलेगा। अंदर से समूर्छिम तैयार हो जाएंगे। घास के बीज बोते हैं क्या? बारिश होती घास उग करके आती, किसने बीज बोए? क्योंकि वनस्पति का है जो है जैन बायोलॉजी में वो समूर्छी में क्या है, और समूर्छी उसको कहते हैं जिसको जन्मने के लिए बीज की जरूरत नहीं होती है। समूर्छिम किसको कहते हैं? जिसको पनपने के लिए बीज की जरूरत नहीं होती है। थोड़ी सी जैन बायोलॉजी है ना, बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरेन्द्रिय असन्नी पंचेन्द्रिय, ये समूर्छिम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये समूर्छिम हो सकते हैं, बिच्छू भी समूर्छिम हो सकता है। मैं एकांत में था, जंगल में कुटिया में था, और पानी का घड़ा था, उस पर मैंने ढक्कन रखा हुआ था, और ढक्कन पर उल्टी करके पात्री रखी हुई थी। पानी पीने के लिए गया, वो पात्री उठाई नीचे बिच्छू। अब पात्री में से बिच्छू जाने की कोई गंजाइश नहीं। अब तब परमात्मा के शब्द आ गए याद कि बिच्छू समूर्छिम भी हो सकता है, मेंढक समूर्छिम भी हो सकता है। ये सारे बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरेन्द्रिय ये समूर्छिम हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि इनमें पूरी जेनेटिक कोड हो, आज की भाषा बोलना हो तो, लेकिन ये है। इसलिए अपने धरती में बीज बोएंगे नहीं अच्छे बीज। यदि विरुद्धी का बीज आपके अंदर बोया गया है एक पल के लिए, यदि तीर्थंकर के पति के आस्था का बीज बोया गया, और इतने तीर्थंकर आस्था के बीज बो दिए, इतने तीर्थंकर आस्था के बीज बो गए कि आपकी जिंदगी पूरी अमराई हो गई। उस अमराई के बीच में किसी ने आकर के कोई जहरीला बीज काटे का बो दिया, पनपेगा? पनप सकता है? और सारे बीज आसपास में बुबुल के बोए है, भोनु भवानी ये वो उन करके आस्था के बोए है, और प्रवीण ऋषि आकर के एक तीर्थंकर बीज बो दे तो पनपेगा क्या? नहीं पनप सकता है। चारों तरफ तीर्थंकर के बीज बो दो तो दूसरा बीज पनपेगा नहीं, और चारों ओर दूसरे बीज बो दो उसमें बीच में एक बीज बो दिया तो वो पनपेगा नहीं। इतने

नामकरण से लेकर तो अंतिम समय तक के सारे बीज किसके हैं? इस्लाम के। वहां दूसरा बीज बोया ही नहीं गया, पक्का दिमाग में बैठा गया कि खुदा, पैगंबर, कुरान, इसके बाहर दुनिया है ही नहीं उनके पास। कितना ही कर लो, ऐसा नहीं तुम कहते कि बच्चे जो है मोबाइल के कारण से बिगड़े। बच्चे के पास, तुम्हारे बच्चों के पास ही मोबाइल है क्या? उनके पास मोबाइल नहीं है क्या? मैं कुकाना से विहार कर रहा था तो उधर साथ में कुछ भाई चल रहे थे, अब रास्ते पर वो छोटी छोटी फल की दुकानें लगा करके बैठे मुस्लिम थे, तो साथ में जो चल रहा था उस भाई ने कहा, मारा साहब ये जितने भी मोबाइल देख रहे हैं ना, इनके मोबाइल पर दूसरा कुछ नहीं देखते, केवल अपने धर्म का ही देखेंगे। बोले तुम सेंड भी कर दो इनको रामायण, तो देखेंगे नहीं, बोले देख ही नहीं सकते। बोले मुझे आश्चर्य लगा, आपको भी आश्चर्य लग सकता है, मोबाइल उनके पास भी है, लेकिन उस मोबाइल के माध्यम से क्या लेना क्या नहीं लेना इसके संसार उनके पास पहुंच गए कि यही लेना है, दूसरा कुछ नहीं लेना है। ऐसे बीज यदि तुमने बच्चों में बो दिए, अब बच्चों में कब बोएंगे? तुम्हारे पास होंगे तो बोएंगे। अब तुम्हारे पास ही 17,000 फॉरेन के बीज है, 17,000 क्या 17,00,000 के दो, मुझे कई बार पूछते लोग, मां सब तपस्या करी, शासन माता की पूजा कर सका कहीं? हमने कहा भाई शासन माता कटे चुप में वे थोकड़ा में तो बाची ना, आगे में तो कटे शासन माता गई नहीं वेगी। नहीं मार साहब वे करे ना, मैं कि वे करे तो उनके बात अलग बन रहे, आगम में तो शासन माता शब्द है ही नहीं। आगम में भवनपति वेंतर ज्योतिषी वैमानिक है, और शासन माता के रूप में परमात्मा ने दी है तो प्रवचन माता दी है, अष्ट प्रवचन माता है। बाकी देवगति की किसी देवी को परमात्मा ने शासन माता कहा ही नहीं। नहीं बोले मां साहब ये शासन रक्षक देव रेवे ना, केवल थोड़ी सी देर के लिए अपने दिमाग को चलाइए, इतना कॉमन सेंस रखिए, कमजोर को रक्षक की आवश्यकता होती है। किसको? कमजोर को। और तीर्थंकर परमात्मा का शासन कमजोर है जो उसको रक्षक देवता चाहिए, और इतने रक्षक देवता है तो मंदिरों में चोरियां क्यों होती है? और दसारे तुमने रक्षक देवता की प्रतिष्ठा करी हुई है, चिचुंडी का कार्यक्रम शुरू हुआ ना तो 2017 में सभी साधु साधु यहां पधारे थे, उन्होंने देखा ये देखा वो देखा वो देखा, पूरा निरीक्षण कर कर आए, मित्रण निरीक्षण मैंने भी नहीं किया था, और बाद में आकर के मुझे बोले कि ये इस दिशा में ये ठीक नहीं, उस दिशा में वो ठीक नहीं, इस दिशा में वो नहीं होना चाहिए। मैं हंसता रहा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोले कि यहां पर एक क्षेत्रपाल होना चाहिए। कौन होना चाहिए? क्षेत्रपाल होना चाहिए, बिना क्षेत्रपाल के रक्षा कौन करेगा? मैंने कहा मैं चुपचाप नहीं, बोले आपने बहुत किया है लेकिन इसकी सुरक्षा के क्षेत्रपाल चाहिए। बोले क्षेत्रपाल चाहिए। फिर मैंने महासत्य मैंने जवाब दिया उनको, महासत्य जी नौकार मंत्र से बढ़कर के क्षेत्रपाल कौन है? और जिसकी रक्षा नौकार मंत्र नहीं कर पाए उसकी रक्षा और कौन करेगा?

ठाकुर कहीं है थे, फक्त सुनो, सोचो को नहीं। और मने आदत कही है, सोचन की आदत है, ठाने की आदत है, फक्त सुनन की आदत है। नहीं बोले मास्टर, मैंने फिर अगला समझ गया, जो श्रीपाल जब विदेश यात्रा के लिए गया था तो कौन सी रक्षा पोटली बांध कर गया था? हेलो, सुदर्शन के पास रक्षा पोटली थी क्या? और सुदर्शन की रक्षा करने के लिए कौन सा देवता आया? उसके बाद अब मुझे कोई, अभी तो कोई केवे को नहीं बने, अभी ना महाराज कहीं कोई वास्तुशास्त्र लेने आवे, ना कोई ज्योतिष शास्त्र लेने आवे, अब सगाने मालूम पड़ गया कि आठे यो माल विकेस को नहीं, विकेस को नहीं। और डे वन से क्लियर हो, डे वन से क्लियर है। जोधपुर में पहला चौमासा था, शुरुआत के दिन थे, थोड़े फुर्सत में थे। एक दिन दो तीन बाबा ऊपर चढ़ गए, उनका झोला लेकर के बेटे खोला, ये जिम्ना शंख है, ये जिसके पास होते उसके पास अकूट धन होता है, ये हाथा जोड़ी है, जिसके पास होती सारे दुश्मन हाथ जोड़ करके आते हैं, ये श्याल शिंगी, दुश्मन सारे भाग जाते हैं। अब एक एक वो निकालता जाए, बताता जाए, मैं भी आराम से देखता जाऊं, देखता जाऊं, देखता जाऊं, सारा मान उसका पूरा हो गया। पूछा क्या दो? मैंने कहा एक सवाल का जवाब दे केवल, ये सब तेरे पास है, तू गली गली क्यों घूम रहा है? तेरे पास चार शंख पड़े, मैंने कहा तू गली गली क्यों घूम रहा है? उसने देखा कि ऐसे बीज बो अपने जीवन में तीर्थंकर भक्ति के, कि दूसरा कोई भक्ति का बीज वहां पनप नहीं पाए। तीकन लगे पंडग वे जयंते से जो यने नव नवई सहस्य उद्धूषितो हेट सहस्य में गम 99,999 योजन ऊपर है, 1,000 योजन नीचे, 99,000 ऊपर है और 1,000 नीचे। इसलिए सुमेरु पर्वत तीन लोक को स्पर्श करता है, कितने लोक को? उसका शिखर ऊर्ध्व लोक को स्पर्श करता है, उसका ऊपर का सारा मध्य लोक में, और जमीन के अंदर का आखिरी जो टोक है वो कहाँ है? चेत अधोलोक को टच कर रहा है। सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं कि मेरे परमात्मा की जो शक्ति का सुमेरु है, वो शक्ति के सुमेरु का स्पर्श उजाला स्पंदन अधोलोक में भी है, मध्यलोक में भी है और ऊर्ध्वलोक में भी है। और उनका तीर्थंकर नाम कर्म ऐसी पताका है, बने लहराती रहती है। शुरुआत करेंगे अपने वीर्य की जागृति की, आगे आ रही तुम्हारी, पता चलेगा मुझे, है ना? क्या आ रही है? बोले आप, ये नहीं बोल रहे, जो कर रहे वो नहीं बोल रहे, है ना? थी नवरात्रि करोला, अन बच्चा ने क्या वाला कि अटने उठने नहीं जाओ नो, और अभी तो एक न्यूज फैली है, शायद आपने भी उसको पढ़ा होगा, मैंने पेपर में पढ़ी है, आपके पास तो सोशल मीडिया में आ चुकी है, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, सूरत, अहमदाबाद, अब दांडिया खेलने के लिए पार्टनर किराए पर मिलने की तैयारी हो गई। दो घंटे के 3,000 रुपए, पूरा दिन का चाहिए तो 10,000 रुपए, और साथ में स्पेशल दिया है, दोनों ही अवेलेबल है,
फीमेल के भी पार्टनर उपलब्ध है, मेल पार्टनर भी उपलब्ध है। अब जोड़ी के साथ जाने की जरूरत नहीं रही, सिंगल भी जाओ तो थाने उठे पार्टनर रेडी है। अगली सगली बात केवल जैसी नहीं है, लिया है कई संतों ने उस पर एक्शन लिए कि गलत है। यहां तक वो गरबा पहुंच गया है, पहुंचनी चाहिए थी आपकी अयम्बिल की ओली, जो तन मन के कुष्ठ रोग को दूर करे वो अयम्बिल की ओली। तुम्हारे घर में उत्सव होना चाहिए नौकार मंत्र का, नौपत की आराधना में परिवार डूबना चाहिए। मैं एक न्यू कंसेप्ट सामने रख रहा हूं आपके, थे अकेला आए मिलके बोली नहीं कर सको ओके, अकेला करो वेलकम है, साधना करा देगा कोई। मैं दूसरी आई मिल की ओली की कंसेप्ट दे रहा हूं आपको, रोज घर में एक रंग का आई मिल होगा, एक जो आई मिल करेगा और आराधना सब करेंगे, आराधना सब करेंगे, आई मिल एक करेगा। आज इसने किया, कल उसने किया, परसों उसने किया, तरसों उसने किया। अब जिरा घर में मेंबर ज्यादा होशीला मैंने डबल आई मिल आई ला को नहीं, अब थे तीन जना सुशीला तो पे तीन बार करो। और घर में मस्त पैंकी आपके पास नौकार तीर्थ कलश है, तो नौकार तीर्थ कलश, नौकार तीर्थ कलश नहीं है तो मस्त पैंकी ड्राइंग करने नौकार मंत्र की स्थापना करो और करो रोज नौकार मंत्र की आरती करो, अलग अलग आज ये आज वो कल वो परसों वो। पुरुषन पर्व घर में पहुंचने की शुरुआत हो गई। अब इस आयंबिल ओली को भी घर में पहुंचाना चाहिए, ये शुरुआत कर सकते हैं अपने घर से, गुरुदेव की भूमि से इसकी शुरुआत हो सकती है कि हर आंगन में आई मिलकी होनी नौपत का उत्सव ही करना है ना तुम्हें, तो अपने देव गुरु धर्म का करो ना, करो ना सेलिब्रेशन, कौन मना कर रहा है। और सब वो पाव पना सुनो आप कहते हैं तो आपको उसका आनंद लेते आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये बीज बोने के तरीके क्या है, ये बीज बोना है, ये बीज बोना है। अर्जुन माने के अंदर परिवार ने मुदगर पानी के बीज बोए तो मुदगर पानी पनप गया, सुदर्शन के अंदर पर भगवान महावीर के बीज बोए गए तो भगवान महावीर पनप आए। एक के जीवन में उल्लास ही उल्लास है और एक के जीवन की टेजड़ी तुम्हारे सामने है।

0: दास, ये सारी गाथा किसके लिए है? शक्ति के लिए। तुम्हारे श्रद्धा में भी शक्ति होनी चाहिए, तुम्हारे ज्ञान में भी शक्ति होनी चाहिए, तुम्हारे चरित्र में भी शक्ति होनी चाहिए, तुम्हारे तप में भी शक्ति होनी चाहिए। केवल ज्ञान पर्याप्त शक्तिशाली ज्ञान चाहिए, केवल श्रद्धा पर्याप्त नहीं, श्रद्धा किसी चाहिए, शक्तिशाली श्रद्धा चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपके पास पहुंची होगी और वीरथ के इस अनुष्ठान के कल के आज के हमारे लाभार्थी हैं सिद्धि तप के, जिन्होंने सिद्धि तप गुरुदेव के चरणों में भूमि पर रहकर के पूर्ण किया। ऐसे भूम वाली ये बहन सुरपुरिया परिवार, भूम से आकर के पूरे परिवार ने आज मिथ्यात्व का पचकान, और आज के पावन अवसर पर वो मिथ्यात्व के पचकान में ले रही है। मिच्छतम परियाना में समत मौसम बज्जामी अरिहंतो तुझ देव आनंद गुरु तुझ गुरु जिनपन्न तम तत्तम चेव तव तत्तम अयम अठे अयम परम अठे शेष अनठे अयम अठे अयम परम अठे शेष अनठे। तीर्थंकर देव ही परमार्थ है, बाकी सब अनर्थ है। गुरुदेव ही परमार्थ है, बाकी सब अनर्थ है। तीर्थंकर और गुरुदेव ने दिया वहां धर्म ही परमार्थ है, बाकी सब अनर्थ है। ये आस्था तुम्हारे निश्चिंत बने, अखंड बने। अभग्गो अविराही हो जतम श्रद्धा, अभग्गो अविराही हो जतम श्रद्धा, अभग्गो अविराही हो जतम श्रद्धा तजंते परिक्रमा निंदा कर ओसरे ओसरे ओसरे। हर्ष हर्ष हा? तो साथ में ले लेती ना, साथ में ले लेती। अरिहंतो तुझ देव अनंत गुरु तुझ गुरु जिनपन्नतम तत्तम चेव तव तत्तम अयम अठे अयम परमठे शेषे अनठे अयम अठे अयम परमठे शेषे अनठे अयम अठे अयम परमठे शेषे अनठे। देव गुरु धर्म तीर्थंकर देव आचार्य भगवान गुरु और उन्होंने दिया हुआ तत्व ही तुम्हारा जीवन का धर्म, उसके अलावा और कहीं पर भी तुम्हारी श्रद्धा नहीं। तजभंते परिक्रमा निंदा कर ओसरे ओसरे ओसरे।
1: हर्ष हर्ष
0: बचकोन बाद बचकोन सरान सर बचकोन। आज और कल के हमारे लाभार्थी है वसंत लाल जी, संतोष जी, मयूर जी, सेठिया परिवार। सेठिया परिवार कल के विरोधी के लाभार्थी हैं।

0: स्वामी की।
1: और बहुत बार आपके पास खबर पहुंच चुकी है कि 4 अक्टूबर को कौन बनेगा कर्म विजेता का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, उसकी पूरी प्रोसेस के साथ उनकी ओर से जो उस पर जिन्होंने आज तक उसमें भाग नहीं लिया, ऐसे भी आप लोग भी उस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, जीत सकते हैं। ये कार्यक्रम 4 अक्टूबर को दोपहर में 2 बजे से है ना, 2 से 5 आनंद धाम पर संपन्न होगा। और पेरेंटिंग का शिविर कल शुरू हो गया है, करीबन 70-80 माँ बाप आए, जिनकी भावना है सुधरने की वो आए, जो सुधरे हुए वो नहीं आए, है ना, जिनको लगता है कि हमको कोई सुधरने की जरूरत नहीं वो नहीं आए। अच्छा सेशन हुआ, इन्हीं भावों के साथ मंगल पाठ। चदारी मंगलम मरियंता मंगलम। बीस अक्टूबर से सुदेव की आराधना शुरू होने जा रही है। मेरे जीवन का परम पर्व, मेरे जीवन का शिखर उत्सव, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन का भी वो शिखर उत्सव बने। जिनकी आराधना हम कर रहे हैं, जिनके कृपा छत्र तले हम जी रहे हैं, उनके निर्वाण कल्याणक के अनुष्ठान की वो वाणी। दुनिया में बहुत धर्म है, दुनिया में तीर्थंकर भी बहुत है, जिन शासन के भरत क्षेत्र के भी 24 तीर्थंकर है। ध्यान से सुननी अगली पंक्ति और आगे पहुंचाना। लेकिन तीर्थंकर महावीर जैसा तीर्थंकर दूसरा नहीं है। 24 में से 23 तीर्थंकर अंतिम समय में मौन हो जाते हैं, कोई 15 दिन के लिए, कोई 8 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई 1 महीने के लिए, कोई समय शिखर पर पहुंचता है, कोई कैलाश शिखर पर पहुंचता है, कोई गिरनार पहुंचता है। अकेले मेरे प्यारे महावीर है जो अंतिम समय में मौन नहीं होते हैं, किसी पहाड़ी पर नहीं पहुंचते। वो तो उनके लिए तो एक ही शिखर है, उनके भक्त है, चतुर्विध संग ही उनके लिए समय शिखर है, चतुर्विध संग ही उनका गिरनार है, चतुर्विध संग ही उनका कैलाश है, और चतुर्विध संग के बीच 48 आवर्स, जिनको जितना गूगल सर्च करना करके देख लेना, 48 आवर्स विदाउट पॉज चलने वाले कोई धर्म सभा है तो केवल तीर्थंकर महावीर की धर्म सभा है। 48 आवर्स तक कंटिन्यू महावीर जो बरसे, अंतिम वाणी, अंतिम शब्द, पिता का परम शब्द, उस शब्द की आराधना के लिए मैं मेरे खून का कतरा कतरा लगाता हूं। और तुमसे भी लगा करके रहूंगा। उत्तराध्ययन सुखदेव की आराधना 20 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। 18 अक्टूबर को उसके भव्य दिव्य मंगलमय आगम यात्रा निकलेगी। कहां से निकलेगी, कैसे निकलेगी, वो विषय समर्पण चतुर्मासी देगा। और 20 अक्टूबर से 7:30 से 9:30 7:30 to 9:30 प्रयास करिए कि 7:30 के बाद एंट्री नहीं हो और 9:30 के बाद कोई यहां रहे नहीं। मैं तो नहीं रहूंगा। एक अनुष्ठान, तीर्थंकर के वरदानों का अनुष्ठान, कल्पना तो करी उस परमात्मा की कृपा की कि 23 तीर्थंकर जिस पल में शिखर पर पहुंचते हैं वो चतुर्वी संघ के बीच बैठते हैं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, तुम समय शिखर जाओ, पलेता ना जाओ, गिरना जाओ, मेरा ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, तुम्हारे तीर्थंकर परमात्मा महावीर ने जिसको शिखर समझा, जिसको कैलाश समझा, जिसको गिरनार समझा, जिसको समय शिखर समझा, वो कौन है? वो चतुर्विध संघ है। और उन्होंने अपने वरदान तो चतुर्विध संघ के बीच बरसाते हुए 12 प्रकार के परिषद उनके बीच में बरसाते हुए सभा को पता ही नहीं चला कि कब निर्वाण हो गया है। ऐसी वो अखंड आराधना है, अनुत्तर आराधना है। मंगलमय आराधना है। और उस आराधना के आराधक जिनेश्वरी, 2 अक्टूबर को नजारा देखिए यहां पर आप। 2 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष से जिनेश्वरी आराधना के ग्रुप यहां पर पहुंच रहे हैं। आप लोगों ने बहुत मेले देखे होंगे, जन्मोत्सव भी आपने देख लिया है, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द निकलेगा ही निकलेगा कि जिनेश्वरी जैसा मेला, जिनेश्वरी जैसा अधिवेशन, जिनेश्वरी जैसा सम्मेलन दूसरा नहीं। एक अनूठा अधिवेशन होगा 2 अक्टूबर को, अब देखते रह जाओगे। सुबह डिटेल कार्यक्रम तो मैंने लेवन पड़ी ला बहुमार करे। मैं एक ऐसा ओनर हूं कि जिसके सारे मुनि मालिक है, मेरा केवल नेम प्लेट है, ऐसा ही मालिक हूं, ऐसा ही हूं, बता रहा हूं कैसा मालिक हूं। अब उन्होंने टाइम टेबल पूछा तो मुझे मुनिम को पूछना पड़ेगा, हाँ नहीं करता हूं। क्या सुबह 8 बजे से, 8 बजे से आनंद धाम से इनका जलसा निकलेगा। गुरुदेव का जो स्मृति कक्ष में जो गुरुदेव का पट्टा है वही इनका समोसर है, और उस पट्टे को प्रदक्षिणा कर करके मिनिमम आंकड़ा बता रहा हूं, मिनिमम 2000 बेने होंगे, मिनिमम कह रहा हूं मैं आपको। और एक ड्रेस कोड में रहेगी सारी, एक स्वर में वो विरथी गाएंगे। और आपने कहा पूछा है तो बता दो, उसमें स्थानकवासी है, उसमें मंदिर मार्गी, उसमें तेरापंथी है, उसमें दिगंबर है, उसमें ज्ञान गच्छ वाले, उसमें रतन वंश वाले है, उसमें साधु मार्गी वाले सब है उसमें। और मैं आराम से कह सकता हूं कि वैसा नजारा नगर वाले ने कभी देखा नहीं और देखेंगे भी नहीं। आठ बजे से वहां से उनकी यात्रा शुरू होगी, और मैं चाहूंगा कि पूरा नगर उस नजारे को देखने के लिए आए। एक अनूठा नजारा है। और मुझे पता है कि मुझे बाद में सुनना पड़ेगा, लेकिन कहना चाहता हूं, रोक नहीं पा रहा हूं स्वयं को। और ये सारी मेहनत, ये सारा श्रम और पूरे समर्पण के साथ किसी ने संपन्न किया है तो महासती सी ओजस दर्शन जी हमारे सामने। सहज मैंने पट्टे पर से कहा कि ये मेरे जिनेश्वरी का कार्यक्रम, इसको आपने संभालना है। दो साल पहले के बाद और मैं बताऊं बाबू सेठ तुझे, चेन्नई वाले अभी आए थे है ना, उसमें से कई बहने केवल इसलिए आई थी कि उनको ओजस दर्शन जी मासा को दर्शन कर रहे थे और ऐसे बोल रहे थे कि बोले उनको देखा और कलेजा ठंडा हो गया। ऐसा ये अनुष्ठान और हर किसी के घर पर, सिख के घर पर जिनेश्वरी की आराधना है, मराठा के घर पर जिनेश्वरी की आराधना है, एक अद्भुत अनूठा नजारा है जिनेश्वरी का। 2 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा था आपकी और 20 तारीख को 18 तारीख को उसका आपका एक नगर वालों के सामने इसलिए बात करी कि 2 अक्टूबर को भी देख लेना और मैं आपके 18 अक्टूबर को देखूंगा। देखता हूं। हेलो आयन ध्यान में है ना, 2 अक्टूबर का नजारा भी देख लीजिए और ये चैलेंज तृतीय शिशु को भी है। ये चैलेंज समर्पण चतुर्मास समिति को भी है और ये चैलेंज आप सबको है। मुझे खुशी होगी कि 2 अक्टूबर से भी बढ़िया नजारा तुम 18 अक्टूबर को करके बताओगे तो मुझे खुशी होगी। देखते हैं। और 20 अक्टूबर से 7:30 से 9:30 मैंने आज बाबू सेठ के कहने से बोलना शुरू किया, मैं बाद में शुरू करने वाला था। 7:30 से 9:30 तुम्हारा परम पिता आखिरी शब्द बोल रहा है और तुम उसके सुनने के लिए यहां नहीं हो तो बाप का नाम तुम्हें लेने का अधिकार नहीं होगा। क्या तुम घर में ऐसा कर सकते हो, किसी का बाप आखिरी सांस ले रहा हो और बेटा दुकान पर बैठे, इज इट पॉसिबल? अरे देवता देवलोक में नहीं रह सके और वो तो 48 आवर्स कंटिन्यू बैठे, राजा तेला कर करके बैठे, 18 राजा तेला कर करके बैठे। मैं तो केवल 2 घंटे के लिए कह रहा हूं, 42 घंटे, 21 दिन के 42 घंटे, 7:30 से 9:30 और उस समय का मेरा प्रोटोकॉल होता है, कोई जयकारा नहीं लगता है महावीर के अलावा। तिखुत्व का पाठ 21 दिन स्टॉप है, तिखुत्व के पाठ से वंदना होगी नहीं, कोई सूचना मिलेगी नहीं, दर्शन होंगे नहीं, वंदना होगी नहीं, पचकान भी कराऊंगा नहीं। पचकान का काम भी जो रहेंगे उनके पास, मेरे पास नहीं। वंदना तो पक्की नहीं होगी, कि उस समय वंदना केवल एक को है, किसको? महावीर को। 21 डेज केवल वंदन भगवान महावीर को रहेगी और सगाने शांति है। 2 घंटे 21 दिन प्रेम ऋषि के बोलीला को नहीं धने शांति है।

0: मैं जाऊं।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
0: ओके।
2: चिराग सेठ, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ ले जाओ।